ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਬੰਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਬੰਦਾ
मेरा मुझ में कैसे नहीं जो कुछ मेरा मुझ में कैसे नहीं जो कुछ ऐसी कोई बात

जैसे रंग होए दोरा फुट गई सभा मलेच की करपुड़ा पासार लंका बाजे पते काने कलंक उतार चतर चक्रवर्ती चतर चक्र भुगते स्वयं भव सबंग सर्वदास जुगते दुकालम प्रणासी दयालम स्वरूपे सदांग संगे पंथ भूते देखते गोपत है नुसत वेदन गया पदज नानक गुरु गोबिंद सिंह जी सरकाल जी सहाय दरबार में तेरो दरबार सत सुन सैन निरंकार लक्ष्मी खड़ी तुमरे दरबार।

त्वा प्रसाद कबित खूकमल हरि गज गदहा विभूत दारि गिद्वा मसान वास करे हुई करत है घुगमट बासी लग डोलत उदास मृग तरवर सदीव वन साधई मरत है बिंद के सदैया ताय ही जिकी बडैया देत बंदरा सदीव पाए नांगे फिरत है अंगना दीन काम क्रोध में प्रभी ने एक ज्ञान के बिहीन छीन कैसे के तरत है भूत बन चारी छित छौना सब दूता धारी पौन के आहारी सोभ जंग जानियत है त्रिण के भछैया धन लोभ के तजैया दित गौवन के जैया ब्रिक भैया मानियत है नभ के उड़ैया ताहे पंछ की बडैया देत बगुला बिडाल ब्रिक ध्यान ठानियत है जेते बड़े ज्ञानी दिनो जानी पर बखानी ना है ऐसे न प्रपंच मन भूल आनियत है भूम के बसैया दाहे भूचरी गजैया कहे नभ के उड़ैया सोच रैया कह बखानी है फल के बसैया दाहे बांधरी गजैया कहे आदि से फिरैया दे तभूत कह पछानी है जल के दरिया को गंगे ऋषि कहत जग आग के फछैया सो चकोर सम मानी है सूरज सिवैया दाहे कौल की बटाई देत चंद्रमा सिवैया को कवि के पहचानी है नारायण कछ मछ तेंदुआ कहत सब कौल नाव कौल जेह ताल में रहत है गोपीनाथ गुजर गोपाल सब धे नचारे लिखे गए नाम के महंत लहियत है माधव भवर ओ अडे रुको कन्हैया नाम कंस को बधैया जम

है जोगी जटाधारी सत्य साचे बड़े ब्रह्मचारी ध्यान काज भूख प्यास देह प्यास हत है। न्योली करम जल होम पावक पवन होम अधोमुख एक पाए ठांड न बहत है। मानव फनिंद देव दानव न पावे भेद भेद योग देव नेत नेत के कहत है। नाचत फिरत मोर बांदर करत गोर दामनी अनेक भाव करो करत है। चंद्रमात शीतल न सूर स्थित पत तेज इंद्र सोना राजा भव भूम को भरत है। शिव से तपस्याद ब्रह्मा से न वेदचारी सनत कुमार से तपस्या न अनत है। ज्ञान के विहीन कार फांस के अधीन सदा जुगन की चौकरी फिरा।

जोगी जाति ब्रह्मचारी बड़े बड़े छत्रधारी छत्र ही की छाया गई घोसलो चलत है। बड़े बड़े राजन के दावत फिरत देश बड़े बड़े राजन के दाप को दलत है। मान से महीप और दिलीप कस छत्रधारी बड़ो अभिमान भूज

एक भावना विहीन कैसे पावे जगदीश को। शीस पटकत जग कान में खजूरा दस मुंड छटकत मित्र पुत्र हूँ शोक सो। आंख गोचरैया फल फूल को बछैया सदा बन को भ्रमैया और दूसरो न बोक सो। कहा भयो भेड़ जो खसत शीस वृक्षन सो माटी को बछैया बोल पूछ लीजे जोक सो। कामना अधीन काम क्रोध में प्रवीण एक भावना विहीन कैसे भेट पर लोक सो। नाचोई करत मोर।

अपना सदापना अनेक तन घायल सहत है। जाप के किए तब पायत अजाप देव बोधना सदैव तुहि तुहि उचरत है। नभ के उड़त जब नारायण पाइयत अनल आकाश पंछी डोल बो करत है। आग में जरत गत राण की परत कर पताल के बासी।

रही मोई दूसरो न भेद कोई भूल भ्रम मान वो एक ही किसे सब ही गुर देव एक ही स्वरूप सब एक ज्योत जान वो देहु राम सीत सोई पूजाओ निवाज हुई मानस एक भयानेको भ्रमाओ है देवता देव जश गंधर्व तुरक हिंदू।

एक अनू का गोट आग उठे न्यारे न्यारे हो के फिर आग में मिलाएंगे। जैसे एक दूर ते अनेक दूर पूरत है, दूर के कनू का फिर दूर ही समाएंगे। जैसे एक नद ते तरंग कोट उपजत है, पान के तरंग सब पान ही कहेंगे। जैसे विश्व रूप ते अभूत भूत प्रकट होए, ताही ते उपज सब ताही में समाएंगे। केते काछ मछ केते उनको करत भछ, केते अच वच होए

काल के बनाए सब काल ही जबाहेंगे। तेज ज्यों तेज मैं तेज जैसे तेज लेन ताही ते उपज सब ताही मैं समाहेंगे। कूकत फिरत कित रोवत मरत कित जल मैं डुबत कित आग मैं जरत है। कित गंग बास कित मदिना मक्का निवासी कित उदासी के ब्रह्माई फिरत है। करवत सहत कित भूम मैं गड़त कित सुआ पे चढ़त कित दुख को भरत है। गैन मैं उड़त कित जल मैं रहत कित ज्ञान के विहीन जक जा रही मरत है। सोध हारे देवता विरोध हारे दान बड़े बोध हारे बोधक प्रबोध हारे जापसी गस हारे चंदन लगाए हारे चुआचार बूज हारे पाहन चढ़ाए हारे लापसी गाह हारे गोरन मनाए हारे मड़ी मंडली पहारे भीतन लगाए हारे छापसी गाए हारे गंधर्व बजाए हारे किन्नर सब पच हारे पंडित।

नारायण न रंगं न रूपं न रेखं न लोभं न चोभंग भूतंग अपेखं न सत्रंग न मित्रंग न नेहं न गेहं सदेवं सदा सर्व सर्वत्र स्नेहं न कामं न क्रोधं न लोभं न मोहं अजोनीय छयाद अद्वय अजोहं न जन्मं न मरणं न वर्णं न व्याधं न रोगं न शोकं भय निर्विखादं अछेदंग भेदंग कर्मंग कालंग खंडंग भंडंग प्रचंडंग पालंग न तातंग न मातंग न जातंग न कायंग न नेहंग न गेहंग न भर्मंग न भायंग।

कहूँ धर्म के कर्म के हरम जाने कहूँ धर्म के कर्म के भरम माने कहूँ चार चेष्टा कहूँ चित्र रूपं कहूँ परम प्रज्ञा कहूँ सर्वभूपं कहूँ नेह गृहं कहूँ देह दुःखं कहूँ औषधि रोग के शोक सुखं कहूँ देव विद्या कहूँ दैत बानी कहूँ जक्ष गंधर्व किन्नर कहानी कहूँ राजसी सात की तामसी हो कहूँ जोग विद्या धरे तापसी हो कहूँ रोग रहता कहूँ जोग जुगतं कहूँ भूमि की भुगत मैं भरम भुगतं कहूँ देव कन्या कहूँ दानवी हो कहूँ जक्ष विद्या धरे मानवी हो कहूँ राजसी हो कहूँ राज कन्या कहूँ सृष्ट की पृष्ठ की रिष्ट पन्या कहूँ वेद विद्या कहूँ व्योम बानी कहूँ कोक की काव कथा कहानी कहूँ अद्र सारंग कहूँ भद्र रूपं कहूँ मद्र बानी कहूँ क्षुद्र स्वरूपं कहूँ वेद विद्या कहूँ काव रूपं कहूँ चेष्टा चार चित्रं स्वरूपं कहूँ परम पुराण को पार पावे कहूँ बैठ कुरान के गीत गावे कहूँ शुद्ध शेखं कहूँ ब्रह्म धर्मं कहूँ वृद्ध अवस्था कहूँ बाल कर्मं कहूँ ज्वाल स्वरूपं जरा रहत देहं कहूँ नेह देहं कहूँ त्याग गृहं कहूँ जोग भोगं कहूँ रोग रागं कहूँ रोग हर्ता कहूँ भोग त्यागं कहूँ राजसाजं कहूँ राजरीतं कहूँ पूर्ण प्रज्ञा कहूँ परम प्रीतं कहूँ आरबी तोर की पारसी हो कहूँ पहलवी पस्तवी संस्कृति हो कहूँ देश व्याख्या कहूँ देव बानी कहूँ राज विद्या कहूँ राजधानी कहूँ मंत्र विद्या कहूँ तंत्र सारंग कहूँ जंत्र रीतं कहूँ शस्त्र धारंग कहूँ होम पूजा कहूँ देव अर्चा कहूँ पिंगला चारणी गीत चर्चा कहूँ बीन विद्या कहूँ गान गीतं कहूँ मलेज भाख्या कहूँ वेद रीतं कहूँ नृत्य विद्या कहूँ नागबानी कहूँ गारुड़ गूढ़ कथा कहानी कहूँ अक्षरा पक्षरा मच्छरा हो कहूँ वीर विद्या भूतं प्रभा हो कहूँ छैल छाला धरे छत्र धारी कहूँ राज साजं

अतुल जय अमित तेज अक्षय अतुल जय ध्यान काज मुंजन अनंत कई कल्प जोग साधत दुरंत तन सीत खाम बरखा सहंत कई कल्प एक आसन।

जरीत कहूँ जोग धर्म कही सिमृत शास्त्र तुचरत सो करम न्योली याद करम कहूँ हस्त दान कहूँ अश्वमेध मुख को बखान कहूँ करत ब्रह्म विद्या विचार कहूँ जोग रीत कहूँ वृद्ध चार कहूँ करत जछ गंधर्व गान कहूँ धूप दीप कहूँ अर्घ दान कहूँ पितृ करम कहूँ वेद रीत कहूँ नृत्य नाच कहूँ गान गीत कहूँ करत शास्त्र सिमृत उचार कही भजत एक पग निराधार कई नेह देह कई गेह वास कई भ्रमत देश देश अनुदास कई जल निवास कई अगनताप कई जपत उर्त लटकंत जाप कई जपत जो कल्प प्रजांत नहीं तदप दास पायत नांत कई करत कोट विद्या विचार नहीं तदप दृष्ट देखे मुरार बिन भगत सगत नहीं परत पान बहु करत होम।

है न छल है न छिद्र है न छल को मिलाओ है न जंत्र है न मंत्र है न तंत्र को स्वरूप है न राग है न रंग है न रेख है न रूप है न जंत्र है न मंत्र है न तंत्र को बनाओ है न छल है न छिद्र है।

ना सीत है ना सोच है ना ग्राम है ना घाम है ना लोभ है ना मोह है ना क्रोध है ना काम है न देव है न दैत है न नर को स्वरूप है न छल है न छिद्र है न छिद्र के विभूत है।

अछेद छेद है सदा गंज गंज गंज है अभूत भेद है बलिय रूप राग रंग है न द्वैख है न भेख है न काम क्रोध कर्म है न जात है न पात है न चित्र चिहन वर्ण है बेअंत है अनंत तेज जानिए भूम विज है सदा छिज तेज मानिए न आद है न व्याद है अगाद रूप लेखिए दोख है अदाग है अक्षय प्रताप देखिए न कर्म है न भरम है न धर्म को प्रभाव है न जंत्र है न तंत्र है न मंत्र को रलाओ है न छल है न चित्र

गजाधपि नराधपि करंत सेव है सदा सिद्धस्पति तपस्पति वनस्पति जपस सदा अगस्त आद जे बडे तपस तपे पिसे किए बेअंत बेअंत बेअंत को करंत पाठ भेखिए अगाध आद देव की अनाथ बात मानिए न जात पात मंत्र मित्र शत्रु सने जानिए सदैव सर्व लोक के

हथ गेट विखै वसै सब ठौर मैं निरधार। जात पात ना तात जाको मंत्र मात ना मित्र, सर्व ठौर विखे रंभ्यो जय चक्र चिहरना चित्र। आदि देवो दार मूरत अगाध नाथ अनंत, आदि अंत ना जानिए अभिखाद देव दुरंत। देव भेव न जानहि जे मरम वेद कतेब, सनक औसन केस नंदन पावहि न सेव। जछ किन्नर मछ

सर्व ठौर रहियो बिराज राज राज प्रवीण जस गंधर्व देवदानु न ब्रह्म क्षत्रियन माहे वैसनंग बिखे बिराज सूत्र भी वह नाहे गुड़ गौड़ न भी

सेस नाम सहंस फरण है नेत पूरण होत सोद सोद हटे सब असुर विरोध दानव सरब गाय गाय हटे गंधर्व गवाय किन्नर गर्भ पड़त पड़त थके महा

नारद आदक वेद व्यासक मोहन महान अनंत ध्याय ध्याय थके सब कर कोट कष्ट दुरंत गाय गाय थके गंधर्व नाच पछर पार सोत सोत थके महासुर पायो नहे पार त्व प्रसाद दोहरा एक समय श्री आत्मा उचर्यो मत्स्यो बैन सब प्रताप जगदीश को कहो।

0: के मुजाफर के तेज प्रवलंग गुड़िया फंदे आयल मंगल सड़िया मंगल पाल सुरान के मस्ताज जस्त के अनु फंदम के शतल जम के हम को मनम के आयल जन हो सिर माथा मुन मरन राम नव पर के मत राम जुना करना राम को पत डंडा से डंडा मुंड में मुंड डंडा सुर डंडा मुंड के तेज नाम नी तम कण सजा हो रे कण बने अहंकार न जोत जते कण पण सरदार बिन पर खंड दे कण तर प्रहार पण दुष्ट मथे के जाय जाय मस्ती मन पाले
1: कारण करिए लेकर वही
0: अंजन वीर है निरंजन प्रवीण है कश्यप के अधीन है कटिल नम लाल के अधीन है देव यहां देव के देवनाथ को निके मैया मोहिले मन बहु के मुजिया राधा के राज मान साज मुख साज आज जो वचन को जो राज तरिया जो मसा लोग का जो लागे करे है के बुद्ध बाला को हर है के सिद्ध कार का साथी है के काल हर को चाल साथी है के काल तीर कैसे तीर राम छा के जिस छी ने छ छी कार के सिद्ध कार के तार के को बोले के हर के सिद्ध से कार में भरी दस को से ना बाद चंद्र से हम भी कर ले सुख से ना बोल के पिता जन पिता को सुख रूप के पारसी बल्ला पठरू पाके श्री राम गुरु सोला से पठरू पाके जी के रहे जो लोग के पाती जाते रे कोड़े के जो से जान दम अटकी रे तो कोई पाली रहे जी चल तस बड़े रे पाट से कर लगा के माव बड़ से पुर से जल से सुंगा वो पड़ी के सो ही अर्थ से रहे जो नाते हैं अदन के सब जा से हला बन रहे हैं सब रहे आज को रे के मोनी रे था रे आज को रे जन दम से जब बहुत तक दम से चांद तक रे तन तन पाव दे चंद्र जो न जो ही रे जा रहे हैं चासा लगन को ना लगन से बैठ कर वसा दम के रे तन रे हाथ की पूर्व बलाओ काम रूप माओ सब बलाओ मैं बिना रूप बहुता हम जाइए पर है पूर्ण जब ना जब जंगल मन दया तब ना तब प्रीत रात जंगल जी को ने पारा की रात पाई एक तो प्रसाद बाद ही संबंध

जय गुरु गुरु निवाज अंतर जामे सच्चे पातशाह जी महाराज धन धन श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज आप जी दे पावन पवित्र स्थान तक सचखंड दरबार दी हंजरिया बरदे होए कीर्तन दे सतगाओ जो संगता वालों बेंत माया हाजर होए जिस खजाने विच माया हाजर कीती सो खजाने भरपूर करना।

बलहारी कुदर वसिया तेरा अंत ना जाए लख्या रहा जात में जोत जोत में जाता अकल कला भरपुर रहा तू सचा साहब शब्द सवाल।

कहूं सिमट भयो शंकर इकट्ठा, सगरी श्रेष्ठ दिखाए अचंभव, आद जुगाद स्वरूप स्वयंभव, अब रक्षा मेरी तुम करो, सिख उबार असिख संहरो, दुष्ट जिते उठवत उत्पाता, सकल मलेच्छ करो रण घाता, जे असुध जताओ शरणी परे, तिनके दुष्ट दुखत होए मरे, पुरख जवन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सबटा।

जयप्रद परिया चुन चुन शत्रु हमारे मरिया देग तेग जग में दो चलै राख आप मोहे अवर न दलै तुम मम

सकल द्वार को छाड़ के गयो तुहारो द्वार, तज नाथ एक शरण आयो, सकल द्वार को

सेवकी संतोखी निशतो सस्ते आया और मंदा पैर लग कर सुखरे धर्म कमाया और दुनिया तोड़े बंदना पानी थोड़ा खाया तू बख्शीशी अगला नित।